जिस तरह के भगत कबीर साहब बयान करते हैं, राम भगत अणियाले थे, ये प्रेमा भगती दे अणियाले थे।

चकोतरे नाम का एक फूल, इसने फूल बीजे, जिस दिन फूल बीजे उस दिन मन की ऐसी भावना हो गई जद फूल वड्डा होवेगा आनंदपुर साहब लैके जावांगी, ज्यों सवेर दी बैठी शाम तक उस फूल दे सराहने बैठी रही। रात कर गई सारी रात उस फूल दा ध्यान, अमृत वेले उठी उस फूल दा ध्यान, दिन बीतते गए बीज पुंगरिया चकोदरे दा फूल हौली हौली खिलन लग पे है। ए बच्ची दिन रात सौंदिया बहंदिया खांदिया पींदिया उस फूल विच ध्यान, कदू फूल वड्डा होवेगा कदू आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ए एक प्यार है, इस बच्ची नू नहीं पता प्यार की हुंदा है, पर एक खिच है एक तड़प है मन विच, और उमर उमर देखिए तो उमर कुछ भी नहीं, पर जे प्यार देखिए ते कैसा प्यार, उठदिया बहंदिया फुल विच ध्यान, निरा फुल च ही ध्यान नहीं गुरु पिता दे चरणा विच भी ध्यान, कदू फुल वड्डा होवेगा ते लैके आनंदपुर साहब।

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जी दी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल, पत्तियां निकल आईयां। ता इस बच्ची ने कपड़े दे एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नू मत्था टेक के ए फुल भेट करना है। इस बच्ची दे मन दी ए भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नू भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वल देखिया, सोहना फुल खिड़ रहा, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

हाथ जोड़ के बैठी रही। फिर उठी, बाल्टी लेके रोज की तरह पानी लेने चली गई। दूसरे पासे बाग दा मालक जसवंत राय बाग दी सैर करन आया। फुल तां होर भी बड़े सन, पर जद इहदी निगाह इस चकोदरे वल गई, अपने नौकर नूं कहण लगा, कामिया फुल ते होर भी बड़े ने, पर एहो जिहा फुल सारे बाग विच नहीं, जा ए चकोदरा तोड़ के लिया। ओ कामा अपने मालक दा हुक्म मन के फुल तोड़न वास्ते तुरिया। ओ बच्ची जड़ी दूर पानी पई भरदी सी बाल्टी विच, उसने नौकर नू फुल वल जांदा देखिया ते समझ गई कि नौकर फुल तोड़न चले। इधर नौकर ने फुल नू हाथ पाया फुल तोड़न वास्ते, उधर उस बच्ची ने उची सारी एक तरला लिया

पुल ना तोड़ी इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी तरला सी कांबे दा धीरता कंब गया उदा हाथ पिछा आया पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा तैनू क्या फुल तोड़ कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती ज्यों उथू भजी।

या उस लड़की का तेनू क्या फुल तोड़ मालिक का हुक्म कामे ने ते मनना है उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी किया हाय ना तोड़ कहंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल पड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही है हाय ना तो हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ हाय ना तोड़ कहंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया कहंदा जा रहा मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया पर उसके कन्ना विच भी इक्को ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गए। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है देव सिख इहदी घरवाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय तन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता इन्हां ने हथियार चुके ये लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया ए हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे ये सारे लोग एक फुलां दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल अस रहे ने मैं कर रहे ने खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुरक पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुरक पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुरका पठाणा ने अपने पैरां थले इन्हां फुलां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने ए तुरक पठान फुलां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुलां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुलां नूं लताड़न वाले ठठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुलां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए। फिर आवाज आई रख लिया रख लिया। ए नजारा देख के
जसवंत राय दी अख खुल गई। सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया। जसवंत राय कहन लगा, भलीए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां, जो सोचदे हां, ओहो कई वारी सानूं सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझते कि इन्हां हथियार चुके ने, ये लड़ाइयां लड़ते ने। पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, वो भी पुन्ना नूं जानते ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकण दी जाच नहीं। ये जिहड़ा सुपना देखे है ये हिंदुस्तान दे लोग कई मजहबां दे, कई जातां दे, ये दुखी ने क्योंकि तुरक मुगल जुलम पै करते ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करते ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी हिंदू धर्म की रख्या वास्ते, हिंदुस्तानियां की रख्या वास्ते, मजलूमां की रख्या वास्ते, जेड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी सानू चाहिदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तों बेमुख हो गए हां। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया साडे लोकां दे भले वास्ते, वो अपने वास्ते नहीं लड़दा। और मैं भी पैसे दे हंकार विच गुरु तो दूर हो गया, पर हुण मैं भी आनंदपुर साहब जावांगा। पर चल पहला देव सिख दे घर चलिए, देख के तां सही उस बच्ची दा की हाल है। जसवंत राय अपनी घरवाली दे नाल ओ फुल लै के देव सिख दे घर वल तुर पिया। मन विच पछतावा कि मैनू की पता सी ओ बच्ची फुल दे नाल

थक आए कर बंधना रखबार थक पड़ो प्रभु दरबार थक आए प्रभु की शाम चार कुंठ दस परमे जोन अनेक बिखे परम आयो आए अनेक जन्म परम शरणी लख 84 जुना परम दे से पाशाह तुहारे द्वारे आए आए अनेक जन्म।

चार चकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश दे नाल अगे वधदे हुए जकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच जकारा छड़ना है, ताकि यह साडी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 दी लड़ाई लगी तां फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तां उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियां नूं गजा पाई, कलगियां वाले दा जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौकी ते। और यह हकीकत है, हिंदू कैप्टन हुए फौजी फिर वापस आए इस चौकी ते आके फिर हिंदुस्तान दी फौज ने कब्जा किया। आओ, ये कलगियां वाले दी बख्शिश की ना जकारा।

हेठ पुकारा। धरती ने रो के पुकार कीती है निरंकार, मैं बड़ी दुखी हाँ।

जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना।

बाबा जी दे चरना चरिया दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विच सेवा करदे रहे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं पर नाम जपण वाले ओ तां हर वेले चेते रखदे हन सतनाम श्री वाहिगुरु।

तेरी तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनु दे दिए। इन्हां ने आख्या महाराज जिवें

नहीं तो फिर भई तू सोच लै, क्योंकि नाम जपण वालियां दे नेड़े जमदूत भी नहीं आ सकते, तो तू किवें आ जाएगा। जदो बाबा जी ने रोह दे विच खूंडा खड़काया, नट लगा

नाम बाणी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत बचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे हो ना, हुन लगातार सुखमनी दी बाणी चला देनी। लगातार नानक विस्तार विखे बाणी दा प्रवाह चला देना ताकि कल युग कदे भी इथे आ ना सके। सच है प्यारी साध संग, बेशक श्री नानक सर साहिब विखे माया दा मथा नहीं टेकिया जांदा, पर गुरु नानक ही जाने कित्थों कित्थों नाम दे विहाजन ली अज तक संगतां आउंदियां ने। अज तक बाबा जी दी बरसी ते लखों ही संगतां दा इकट्ठ होंदा है, ते उदों तो लैके अज तक अणगित वरियां तो ओ श्री सुखमनी साहब दे पाठ

चोला बदलन लगिया कोई देर नहीं लगाउंदे। आख्या हाथी नूं तां कच्ची तंद तोड़न वेले भी समा लग सकदा है, पर महापुरख चोला बदलदे आ इक निमक भी नहीं लगाउंदे। महापुरख तां चोला इंज छड़ जाउंदे ने जिवें सप अपनी कुंज छड़ जाउंदा है। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। बाबा जी जदों चोला छड़ गए, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने सेवा संभाली, ता उस वेले भी कलयुग ने आके अवज्ञा करनी चाहिए।

ऐसे लै गया सेवा लै गया माया लै गया पर ऐसे महापुरख जिन्हां ने मेनू तारन दा सोचिया चरना ते गिरिया महाराज बख्श लो ता इसने भी अमृत छकिया ते होर इसनू देख के हजारा संगता ने अमृत छकिया ए सन बाबा जी दे तारन दे ढंग नाम जपावन दे निराले ढंग सन बाबा जी दे जो कोई भी आंदा उसनू नाम जपावन दे ताई ता अज नाम जपिया जिथे बैसन साध जन सो

जेकर किधरे मन ने कैवी देना मैं अज नाम नहीं जपना ते बाबा जी ने खुदी डार उत्ते जा बैठना खुदी बनी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा सोवेगा आलस करेगा ते फिर तू खूह विच गिरेगा ते मर जावेगा ऐसा डर पाके मन नू निरंकार नाल जोड़ना बाबा जी 12:10 ते नितनेम विच आ जांदे सन ते 12:10 ते जदो आपने सिमरन करना तां कलयुग ने नींदर नू भेजना भी जा इन्हां नू नाम ना जपन दे ते बाबा जी ने केसां नू किली नाल बन लेना आखना जदो नींद आवेगी ता केस खिचे जावणगे ते दर्द होवेगा ता मैं फिर उठ के नाम जपन लग जांगा साध संगत बोलो श्री वाहे गुरु क्योंकि नाम जपन वाले हर वेले यही अरदास करदे हन निरंकार ना विसरी ना विसारी आप दया नू आप दे करी इस तरह अनेकां ही रूहां नू आप भी जपिया बाबा जी ने ते दुनिया तो भी जपाया जे किसे हिंदू ने आउना ता बाबा जी ने कहना भई गायत्री दा पाठ करिया कर जे किसे मुसलमान ने आउना ता बाबा जी ने आखना भी 5 निवाजां गुजारिया कर जो कोई तुहाडा धर्म है उस विच परपक रहो ते जेकर सिख ने आउना ता आखना भी मन विच एक टेक रख लै गुरु नानक दी गुरु नानक तेरे सारे कार्ज सवारेगा ते ऐसे अमोलक लाभ

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए कईआं जन्मां तों इही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना

तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस शब्द दे विच उपदेश देंदे हैं। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाउ बुरा। सतगुरु तो

परमेव मूड़े ममता लागे तुद हर विसरे तू क्रोध दे वस हो गए काम दे वस हो गए ममता दे वस

गुरु अमरदास जदों गुरु नहीं सन बने हर साल हर द्वार गंगा नहाण जाया करते सन। इस वरी भी गंगा नहाण जदों गए एक ब्रह्मचारी महात्मा मिल गया। ऐसा प्यार पिया इकट्ठिया यात्रा की थी, इकट्ठिया स्नान

गुरु अमरदास जी ने बैठ के शक लेना, जे गुरु अमरदास जी ने प्रशादा पकाना, उस ब्रह्मचारी ने नाल बह के शक लेना।

गुरु अंगद साहब दूसरे गुरु। गुरु अंगद साहब की सपुत्री अमृत वेले बाणी पढ़ रहे सन ते गुरु अमरदास पुछदे ने, बेटा ये तू की पढ़दी है? अगू जवाब दिता, पिता जी मैं तन गुरु नानक की बाणी पढ़दी हूं।

जेड़ा गुरु की कृपा द्वारा गुरु दे कहे ते चलता है उदा एक घड़ी विच उधार हो जाता है, नहीं तो इंसान मोह माया विच डुबदा रहे।

तू घोड़े ते चढ़े क्योंकि तेरा मन मेरा हो गया थले उतरिया। सोझी हो गई कि सारा झगड़ा ही मन दा, जदों मन वस विच आ जाए उदों इंसान गुरमुख भगत महापुरश बन जांदा। ते मन उदों वस विच आंदा है जदों गुरु दा उपदेश मिलदा है। जदों असीं अपना मन गुरु नूं दे देने आ फिर साडे सारे कार्ज रास हो जांदे ने। गुरु साहिब जी बाणी विच

एक शब्द तू चीने नहीं फिर जूनी आवेगा। जदू तक शब्द विचार नहीं करेगा जूनिया विच पटकदा रहेगा। इस वास्ते उपदेश है तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नू ना सिखाल।

गुरु साहबान किया चंगा फिर हूं जदों सिखां दे अगे नकां रगड़ोगे फिर तुहानू अमृत मिलेगा। भाई भगतू दी वंश विचों ही भाई जीवना जी होए ने।

नाम जपण वाली, ना पति है ना कोई पुत्र है। ए राम सिंह, ए चारों प्रहार, ए

अतिसो पजी पजी आई। बीबी देसा नू गलवकड़ी विच लै लिया ते नाले झूमदी हुई कहन लगी, देसा एक खुशखबरी लैके आई हां, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे पिंड आ रहे। कोई कुछ भी कवे पर मेरा मन कहिंदा है जे साहब जी आ रहे ने तां सिर्फ

दरवाजे दिया चीथा विचो दर्शन कर लवे। अरदास करती करती ने अखा बंद कर ली, ये बौरी भोले गई अखा बंद कर लिया ने। साहब जी निकल गए ते दर्शन किवें कराएंगे। उधर राम सिंह बीबी देसां दा बुआ लंघ गया, पर वो अनाथां दा अनाथ अरशां दा मालिक कलगीधर पातशाह निमाणियां नूं माण देण वाला। बीबी देसां दे बूहे अगे आया, घोड़ा अपने आप रुक गया, घोड़े तों छाल मारी बीबी देसां दे वेहड़े जा खलोते। उस निमाणी वल देखिया जिहदियां अखां बंद ने।

चरण फड़ ले, अथरू नहीं रुकते, कोई इज्जत नहीं देंदा, कोई मान नहीं देंदा, पर जदों पिता गुरु मिलिया मन फिस गया। ऐ मना, पिता गुरु घर आया, हुण गुरु नूं अपना दुख दसना है, अपना सुख भी तां इहनूं कहना है, होर कौन है। पता नहीं किन्ना चिर बीत गया, कलगीधर पातशाह ने प्यार नाल सिर चुके आख्या, बेटा ये साडा खेस संभाल के रख, अस फिर आके लै जांगे, नाले रोटी भी खावांगे। बीबी देसा किसे आनंद विच गुआच गई, सबा फिर घोड़े ते छाल मार के सवार होए। राम सिंह अगे उड़ीक रहा सी, ओदे पिछे जा पहुंचे।

एक चौकी ते प्रसादा पका के रखे है। अखा बंद ने पखाई में चल दी पई जिवे साहब जी प्रसादा पे छक दे प्यार देखे ते साहबां ने भी मलकड़े जे

नहीं करोगे तुसा मेरा की सत्कार करना है। फॉर्मै कढ़ो मना विचो, देखो इनू मथा, तुसी चार भरा हो, अमृत छके है पर आपस च प्यार नहीं।

माया का माण करना यह भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी ए माणवी की धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे याद रख एक दिन पछताए। साहबां का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर को रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा से फिर रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो मैं पापी मेरे कोलो कुल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े दिस दिन जे शीशे कोल जाइए शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता तां लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रोज उबा मार के रोई जाता कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी संगत।

रो लिया थे। रो रो के मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुतो पातशाह बख्श। अदूर कहन लगे मरदाने बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो, ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद सारी संगत। तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तो क्या करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन कोई तक गाड़ी बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलाव। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलीए। मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पुछण वाली गल है चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया। अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। अदूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म ते जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिखना सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर। सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का बह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असि आवे तेरे घर प्रसाद भी छकेंगे ते आके वाहिगुरु के नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह भी छोड़िए चरण तो कह पातशाह मैं गरीब ने भी बख्शिश कर दिती है। हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की बख्श जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाज करोड़िए बख्शिश होते तो भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा उजने बख्शिश तो शरीर ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा विचे बख्श दो वे आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया। जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा। चौड़िया ये मालिक की दात ये जोर भी चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत से तो यह दात गुरु की अपनी है। हजूर कह लगे मरदानिया रवाब चुके शब्द की अकेली तक पड़ी मरदानिए ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले चे शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

हम देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसा। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीती। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे नाल

सेवक के भरपूर जोग जोग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।

सारी लुकाई 84 लाख जून उस अकाल पुरख वाहिगुरु पासो मंग रही है। आखें मंगे देहे देहे दात करे दातार, किसे नू वापस नहीं खाली नहीं भेजदा। वाहिगुरु दाता दे रहा है, पिछे भी देंदा आया हुण भी दे रहा है, ते रहिंदी दुनिया तक देंदा ही रहेगा। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह एक अमोलक दात मांग रहे हैं। कहिंदियां ए मनुख तैनू जुगा जुगंतर मंगदियां हो गया, देन वाला नहीं थकिया नहीं अकिया, लैन वाला थक जांदा, भाव स्वास पूरे हो जांदे ने, फिर जन्म लैंदा फिर मंगदा। इसे तरह अनेक जन्म मंगदियां हो गए हैं। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने काश के तैनू मंगना आ जांदा ता फिर तैनू कुछ मंगण दी लोड़ ना पैंदी। दाता ता रोज ही मंगदा है, किते दातार नू मंग लैंदो ता तैनू मंगण दी लोड़ ना पैंदी। क्योंकि जिन्हां ने दातार नू मंग लिया ओ मंगण वाले नहीं रहे, ओ वंडन वाले बन गए। उचारण करो श्री सात संगत बोलो श्री। महापुरख क्या करदे सन भाई, गुरु दे दर ते आए हैं, भाग जागे हन, पता नहीं कितने जन्मां दे पुन्ना दी पंड सिर ते होवे। एडे पुन परबल होवन तां आ सतसंग दा बैकुंठ नसीब हुंदा, गुरु दा दर नसीब हुंदा। ते एड्या पुन्ना दा सदका तूं आया गुरु दे चरणां विच, ते मंगियां दातां नहीं, मंगना दातार नू है। उचारण करो श्री। विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। भुख उतर जांदी है जिन्हां ने गुरु नू मंग लिया, फिर उन्हां नू कुछ मंगण दी लोड़ नहीं रही, जिन्हां गुरु नू मंग लिया। प्यार वालिया ने जदों भी कुछ मंगया, अमोलक खजाना मंगया। असी होंदे तां कोई धन दौलत महल मारियां ती पुत्र कोई होर चंगा कार विहार मंग लैंदे, पर प्यार वालिया ने जदों भी मंगया अमोलक खजाना मंगया। जे कन भी मंगे हन तां आख्या कोट करन दे मेरे प्यारे, करोड़ा कन दे, उन्हां कन्नां नाल मैं तेरी बाणी सुना। अरदास करी प्रभ अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। ते जे नाम जपन लई रसना मंगिया हन तां आख्या जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दे, इनिया जीवा नाल मैं तेरा नाम जपा। क्योंकि असी कलयुगी जीव हां, कलयुग दे विच मनुख दी उम्र छोटी है, दिन रात छोटे हन, हे वाहिगुरु तेरे गुण बहुत हन, इसलिए जे तुठा है। भाई साहब नंद लाल जी ते प्रसन्न होए ना मेरे साहब जी, नंद लाल साडा जी करदा है कुछ भंग, एक वेरी दो वेरी तीसरी वेरी बचन होया, तू कदे कुछ नहीं मंगया। क्योंकि जिन्हां नूं गुरु मिल गया बाकी मंगना रह भी की गया। उचारण करो श्री। जिथे आप दातार आ जावे उदे खजाने पिछे नहीं रह जांदे, खजाने नाल ही आउंदे हन। पर महाराज कहंदे ने तेरा रिश्ता भी गुरु दे नाल प्यो पुत्र वाला होवे। ए ना होवे भाई तू मनता मनदा रवे, हे वाहिगुरु मेरा आ कार्ज संवार ते मैं अखंड पाठ करावांगा, आ सवारे तो मैं लंगर करांगा, आ सवारे तो मैं चलिया कटांगा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ये तो मजूरियां हन भाई, मजूर आउंदा है सवेर तो शाम तक मजूरी करदा है, शाम नू पैसे लैके चला गया, कोई रिश्ता तो नहीं ना जुड़िया। रिश्ता तां उन्हां दा ही जुड़िया है जिन्हां ने गुरु नानक दे घर दी सेवा